वापस आ गया स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम। सत श्री अकाल मेलबर्न। अज सांझी करदे आ तुहाडे नाल यार कलीमा दी शायरी। ओ लिखदे ने, डरना ए ते तीर ना मारी। मैनूं बहुत ही प्यारे पाकिस्तानी शायर लगदे ने यार कलीमा, ते मैनूं इन्हां दीआं सारीआं रचनावां ही बहुत पसंद ने, ते मैं तुहाडे नाल वी कुछ सांझियां करिआ करांगी हर हफ्ते। ओ लिखदे ने, कंबदे हत्थीं चीर ना मारी, डरना ए ते तीर ना मारी। हीरा ए ते दिल दा शीशा, हीरा ए ते दिल दा शीशा, दूरों वेख लकीर ना मारी। इको छां दे महिटर किते, इको छां दे महिटर किते, बदलां नूं जंजीर ना मारी। वादे घाटे रब दे जिम्मे, वादे घाटे रब दे जिम्मे, कल नूं मूँह ते सीर ना मारी। सबर दी दौलत रख कलीमा, सबर दी दौलत रख कलीमा, लालच विच जमीर ना मारी, लालच विच जमीर ना मारी। अगलिया जवाब देण दी थां ते, जवाब देवण दी थां ते अगों सवाल करके, जवाब देवण दी थां ते अगों सवाल करके, ओ अपने वलों विखा रिहा सी कमाल करके। ओ हाल ने कि गली च कुत्ता ना नज़र आउंदा, ओ हाल ने कि गली च कुत्ता ना नज़र आउंदा, हराम शै जे हलाल हुंदी हलाल करके। ए जिंदगी नू पता ए सारा, तू जिंदगी ए, ए जिंदगी नू पता ए सारा, तू जिंदगी ए, मैं जी रहा वां ते सिर्फ तेरा ख्याल करके। भरा भी हुंदा सी, अज बन के शरीक आया आ, भरा भी हुंदा सी, अज बन के शरीक आया है, ते इने जाना है साढ़े कुकड़ नूं दाल करके। कलीम तलियां च सेक एवें ते नहीं जांदा, कलीम तलियां च सेक एवें ते नहीं जांदा, कोई ते वेंदा है तेनूं अखां नूं लाल करके, कोई ते वेंदा है तेनूं अखां नूं लाल करके। सुन दे एक गीत ते फिर वापस आने स्टूडियो दे विच।

0: वापस आ गए स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न। स्टूडियो विच हुण साडे नाल शमा जी भी आ गए ने। सत श्री अकाल शमा जी।
1: हाँ जी, मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: जानदे आ इस हफ्ते दा जिहड़ा वैदर आ उह किवें दा रहूगा। इस हफ्ते जिहड़े मेलबर्न च जिद्दां अज वी आपां देखिआ वी पिछले वीक वी देखिआ कि सर्दी शुरू हो चुकी आ। पहलां लोक कह रहे सीगे कि इस वार थोड़ियां विंटर लेट ने ते इन्नी ठंड नहीं पै रही, पर पिछले हफ्ते दे वैदर ने दसता वी मेलबर्न दा वैदर सेम ही आ, ठंड हैगी ही हैगी है इत्थे।
1: हां जी, जिहड़े इह कह रहे सीगे कि ठंड नहीं पैणी, अज दसो पैणी आ कि नहीं पैणी, जां पै चुकी कि नहीं पै चुकी।
0: इस हफ्ते जिहड़ा मेलबर्न दा वैदर आ उह मैक्सीमम 13-16 ते मिनीमम 6-14 डिग्री दे विच विच रहूगा ते पूरे हफ्ते बदल रहणगे ते हल्की जी दरमियानी बारिश होण दी भी संभावना आ। हुण जांदिआं दिनां दे मुताबिक जिवें अज दा टैंपरेचर सानूं पता ही आ कि 14-15 डिग्री दे विच विच आ ते जिद्दां कि क्लाउडी वैदर आ ते पूरा दिन क्लाउडी ही रहेगा ते हवा चलदी रहेगी ते बारिश दी संभावना आ जिहड़ी उह बहुत ही ज़्यादा घट है। मंगलवार 30 जून नूं सवेरे चंगी बारिश दी संभावना है ते टैंपरेचर रहेगा 12-15 डिग्री दे विच विच ते दुपहर तो बाद भी बारिश काफ़ी पै सकती आ। जे बाहर जाना तां अंबरेला ते मोटी जैकेट ना भुल्लियो।
1: बिल्कुल जी, वैसे तो हुण लगदा कि सर्दियां दा मौसम हैगा, जैकेट ते हमेशा ही अपनी कार विच रखो, एक दियां वी दो रख लिया करो ते